मैं संदेश अलक्षर मत सुन रहे हो रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जबला हो चुके हैं हुण तक दी अहम खबरां दा तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। सब तो पहला गल करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2026 दी तां गल भारतीय हॉकी टीम की करिए तो भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के मैच में पाकिस्तान विरुद्ध अपना दबदबा जारी रखा इस 5-3 के फर्क नाल जितने विच कामयाब रही। पूल डी दे इस महत्वपूर्ण मैच में भारतीय टीम का दबदबा पहले क्वार्टर तो ही दिखाई दे रहा है जिसनू उन्होंने अंत तक बरकरार रखा चोटी के 8 विचों अपना स्थान पक्का किया। टीम इंडिया अगले दौर में पहुंच गई है जदों कि पाकिस्तान सैमीफाइनल की दौड़ चो बाहर हो गया है। उधर दिल्ली विच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई जिस विच पार्टी के उच्च लीडर ने शिरकत की। इस मीटिंग बारे जानकारी दिंदिया कांग्रेस के जनरल सकत्र के सी वेणुगोपाल ने दस्या कि इस विच CWC मैंबर स्थाई मैंबर विशेष सदे गए मैंबर समेत कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। वेणुगोपाल ने कहा कि मीटिंग विच कुल 88 तो वध लोगों ने शमूलियत की जिन्हां विचों 33 मैंबर ने चर्चा विच सरगर्मी नाल हिस्सा लिया। चर्चा करन वालियां विच वख-वख सूबियां दे मुख्यमंत्री अते वर्किंग कमेटी दे सीनियर मैंबर शामिल सन। मीटिंग दा मुख्य एजेंडा बारे गल करदिआं उन्हां दस्सिआ कि जयराम रमेश दे कहे अनुसार इस मीटिंग दा मुख ध्यान 3-4 वड्डे मुद्दिआं ते केंद्रित रहा। इस मीटिंग नूं आउण वाले समें विच पार्टी दी रणनीति दे लिहाज नाल काफी महत्वपूर्ण मन्निआ जा रिहा है। उधर कौमी इंसाफ मोर्चे वालों सजावां पूरियां होण दे बावजूद जेल विच बंद बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके 21 अगस्त शुक्रवार नूं पंजाब बंद दा ऐलान कीता गया है। ताजा जानकारी मुताबिक मोर्चा सवेरे 7 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक बंद दी कॉल दित्ती गई है। इस दौरान आवाजाई बंद रहेगी ते एमरजेंसी सेवावां पूरी तरह दे नाल बहाल रहणगियां। पंजाब बंद दे सद्दे नूं लैके कौमी इंसाफ मोर्चे दी जे गल करिए तां उन्हां दे आगुआं वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई। इस विचाले लोकां दे मनां विच बंद नूं लैके कई तरह दे शंके हन। सूत्रां तों मिली जानकारी अनुसार इस बंद दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहण दी संभावना है। हालांकि अजे तक स्कूलां विच छुट्टी नूं लैके किसे धिर दी कोई अधिकारित बयान सामने नहीं आया पर मोर्चे वल्लों पंजाब दीआं सारीआं धिरां नूं बंद दौरान सहयोग करन दी अपील कीती गई है। मोर्चे वल्लों पंजाब दीआं व्यापारिक इकाईआं समाजिक जथेबंदियां सिखिअक संस्थावां नूं बंद दा समर्थन करन दी अपील कीती गई है। लिहाजा सूबे भर दे बाजार भी बंद रह सकते हन। इस दौरान ट्रेना दी आवाजाई भी प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्ट सेवावां पूरी तरह दे नाल बंद रहणगियां। मोर्चे दे आगुआं वल्लों सजावां पूरियां होण दे बावजूद जेलां विच बंद बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग कीती जा रही है। इस तों इलावा साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में जेल अंदर बंद जगतार सिंह हवारा नूं पैरोल देने की भी मांग की जा चुकी है। मोर्चे के आगुआं का कहना है कि वह लोगों नूं बंद प्रति जागरूक करनगे ते उन्हां नूं शांतिपूर्वक तरीके नाल बंद की पालना करन लई प्रेरित करनगे। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कौमी इंसाफ मोर्चे वालों 21 अगस्त नूं दिते पंजाब बंद के सद्दे का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि पंजाब बंद के समर्थन में 21 अगस्त नूं श्रोमणी कमेटी दफ्तर ते समूह अदारे भी बंद रहणगे। उधर आगामी विधानसभा चोणां नूं लैके अकाली दल वारिस पंजाब दे इक मुकाबले दी तैयारी कर रहा है। सूत्र दस्दे हन कि जेल विच बंद खजूर साहिब तो संसद मैंबर अमृतपाल सिंह धूरी विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खिलाफ चोण लड़ सकते हन। पार्टी सूत्रां ने इस गल ते हामी भरी है कि खजूर साहिब तो इलावा अमृतपाल सिंह ने धुरी तो चोण लड़न विच दिलचस्पी प्रगटाई है जदों कि तलवंडी साबो ते रामपुरा फूल दे बदलां ते विचार कीती जा रही है। सूत्रां ने कहा है कि पार्टी मुखी धुरी तो चोण लड़न ते दे चाहवान हन। इस संबंधी बाकायदा मीटिंग भी चल रही है। पार्टी सूत्र दसते हन कि विरोधी पार्टियां ने दिग्गज उम्मीदवार नूं उन्हां दे गढ़ विच ही चुनौती दित्ती जावेगी। सिर्फ अमृतपाल ही नहीं सगो पार्टी दे मुख चेहरियां नूं होर मुख विरोधियां खिलाफ मैदान विच उतारिया जा सकता है। धुरी नूं वर्तमान विच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी दा गढ़ मन्निआ जांदा है। कस्बे विच वड्डे पद्धर ते बुनियादी ढांचे दे अपग्रेड अते मावां दीआं सत्कार योजना वर्गियां कई सरकारी पहलकदमियां दी शुरुआत देखण नूं मिली है। इत्थे इह वी दस दईए कि वारिस पंजाब दे वल्लों पहलां ही 6 उम्मीदवारां दा ऐलान कीता जा चुक्या है। हुण जदों अमृतपाल सिंह दे धुरी तों चोण लड़न दी गल चल रही है ते जेकर इह चर्चे सच साबित हुंदे हन तां धुरी पंजाब दी सब तों वध हॉट सीट बण जावेगी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ bisoni 101.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony. Remember the name, Permanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

हां जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.4 संदेश अलग दे नाल तुसी पाने होए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नू नवा लुक देण दे लई वेट लूज कीता, पर जरूरत तो ज्यादा पतला हो जाण दी वजह नाल कईआं नू तां तारीफां तो ज्यादा ना ट्रोलिंग दा सामना करना पिया सी। उन्हां बारे ही मैं सोचा कि क्यों ना गल करा, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा क्रेज वध चुकिया है लोगों के पतले होण दा। हर कोई चाहता है कि मैं पतला होवां, बहुत पतला होवां। बहुत पतला होण दे चक्कर दे विच कई कई स्केलेटन हो जाते हैं, कई वधिया लगते हैं, पर कई मतलब ट्रोलिंग का शिकार होना पैंदा। तो मैं अज उन्हां ही एक्टर्स बारे दसूंगी जो ज्यादा पतले हो गए थे, उन्होंने ट्रोल किया गया उन्होंने पतली लुक करके।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

जी आनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पे सोने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल सुपने हो। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दिया तस्वीर ते वीडियो ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदों अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुक गए तो कंपैरिजन वीडियोज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से छा गए कि पहला की सी हुण की बन गए है ने। तो उस तो बाद उन्होंने काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जिम्मे तुम पहला दस्या कि बहुत सारे एक्टर्स है तो उसी तरह के सोहेल खान कले एक्टर नहीं है जिन्होंने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्होंने चली हैगी बहुत सारे है उन्होंने बारे दस दया तुम एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, विरे। अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बेन द्वारा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery pass वाली shop से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour, और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck, और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
4: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
5: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
4: Acha? Wo kya?
5: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus foreign exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
4: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी.
6: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
8: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2000.
9: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों थर्सडे का दिन और मतलब वीकेंड दूर नहीं है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका कामकाज? कहीं आपके बॉस ने आपको स्ट्रेस तो नहीं दिया? कहीं आपके टीम लीड या मैनेजर ने आपको परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? अगर आपको परेशान कर रहा है ना कोई, तो आप अपनी आरजे निव्या का नाम ले दीजिए, बोल दीजिए कि आरजे निव्या देख लेगी, हमको परेशान मत करो। जी हाँ, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो आपको अपना काम इतना प्यारा हो जाएगा कि आप खुद काम करना चाहेंगे और आपके मैनेजर्स एंड आपके बॉसेस को इवेंचुअली आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बॉसेस कैन बी ट्रिकी टू हैंडल, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, सबसे खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके सपनों को अचीव करने के लिए उनके साथ साथ पूरी दुनिया काम करे और बढ़ चढ़ कर काम करे और ऐसे काम करे जैसे ये उनके नहीं बल्कि उन सब एम्प्लॉयज का भी सपना है जो कि उसके लिए काम कर रहे हैं। सो या एम्प्लॉयर्स कैन बी ट्रिकी टू हैंडल, यानी बॉसेस कैन बी ट्रिकी टू हैंडल, बट अगर आपके पास कोई चाबी आ जाए, मतलब आपके पास कोई ऐसी स्कीम आ जाए जो कि आपको पता चल जाए कि ओके, मेरे बॉस के लिए, मेरे मैनेजर्स के लिए ये जो है वो चालू पंती करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये हथकड़ी जो है वो काम आएगी, हथकंडा, जी हाँ, नॉट हथकड़ी, हथकड़ी तो कुछ और होती है, जी हाँ। सो वो वाली चीज को आजमाइए और फिर देखिए, अगर आपने, जैसे कहते हैं ना कि किसी के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, खासकर मेरे दिल का रास्ता तो मेरे पेट से होकर ही जाता है, तो अपने बॉसेस को भी ऐसे लुभा दीजिए अपने काम से कि वो कभी परेशान करें ही ना आपको। सो इवेंचुअली अगर आप ऐसा कर लोगे तो परेशान तो आप हो गए नहीं, और अगर आपके बॉसेस, आपके मैनेजर्स, आपके टीम लीड आपसे खुश रहेंगे तो फिर तो मतलब प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो जिंदगी आसान हो जाती है आदि। जी हाँ, क्योंकि लेट्स बी रियल, हफ्ते के 5 दिन 8 घंटे आपको अपने ऑफिस में रहना है और ऐसे में उस इंसान के साथ आपकी अच्छी बननी चाहिए जो आपके साथ पूरा दिन वहां रहकर काम करता है और कहीं ना कहीं आपका सुपीरियर है। सो मैं कहती हूँ कि उनको पीछे से उनकी चुगली चपाटी करना और उनको गालियां देने के बजाय उनके दिल का रास्ता, यानी कि उनके दिल का रास्ता काम के तरह से, काम के तरीके से कैसे जाता है वो देखिए और फिर देखिए, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा वाह क्या मंत्रा दिया है, तुम्हें बॉसेस ने ब्राइब तो नहीं किया है कि इनको बोलो ऐसे ऐसे करके ताकि ये ज्यादा काम कर सके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, डोंट वरी। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड फिजिकली हेल्दी रखता है हमें। तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बड़े ही प्यारे से गाने के साथ जिसका नाम ही है नज्म। नज्म सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम की। क्या कह रहा है मौसम? जी हाँ, क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर? सबसे पहले 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 20.1 डिग्री सेल्सियस के करीब, मतलब ये पिछले दो दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि पिछले दो दिन से टेम्परेचर जो है वो लिटरली 20 के नीचे आ गया था दिन में भी। सो यही है टेम्परेचर दिन का। रात की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। 50% चांसेस जो है वो बारिश के यहां दिखाए हुए थे, जो कि 4 बजे तक मुझे फिर भी थोड़ी बहुत कहीं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद मौसम मुझे एकदम साफ नजर आ रहा है। बादल बीच में होंगे बट बारिश जो है वो नहीं होगी। और इसी के साथ 4 बजे के बाद की बात अगर हम करें तो मौसम जो है वो बादलों वाला होगा लेकिन बारिश नहीं होगी, लेकिन एयर क्वालिटी जो है वो एकदम एक्सीलेंट होने वाली है और अभी भी एक्सीलेंट ही है। जी हाँ, तो ये तो हुई आज की बात। और फ्राइडे की बात करें तो कल पूरी तरह सनी सनी माहौल रहने वाला है विद 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। 10% चांसेस है बारिश के, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, और अगर होगा भी तो नॉर्थ ब्रिस्बेन के कुछ इलाकों में बारिश की थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देखी जा सकती है। इसके अलावा बाकी सब बढ़िया मुझे यहां पर नजर आ रहा है। सैटरडे की बात करें ऑन द अदर हैंड तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ यहां पर 10% चांसेस मुझे बारिश के होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगेन थोड़ी से बादल जो है वो आपको आसमान में दिख सकते हैं। बट कल यानी कि फ्राइडे को सब कुछ एकदम क्लियर रहने वाला है। सो फ्राइडे सनी सनी भी होगा, और फ्राइडे तो फ्राइडे है। सो फ्राइडे अगर सनी ना भी हो तो भी सनी सनी फील होता है, बिकॉज फ्राइडे इज फ्राइडे। नीड आई से मोर? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही जबरदस्त है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com।
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
3: Better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance
2: to win. Assi 50 cent de kiraye pakke taur utte lagu kar dete han. Assi hor vi vadh doctor muhaiya karwa rahe han ate Prince Charles ate Royal Brisbane varge ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो अब जरा आपकी फरमाइशों की बात कर ली जाए, क्योंकि इवनिंग वाइब को आपकी फरमाइशें ही तो स्पेशल बनाती हैं। जी हाँ, मतलब हमारी तरफ से एफर्ट्स होते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो चार चांद लगाए जाते हैं थ्रू योर फरमाइश, ये तो एकदम कमाल की बात है। जी हाँ, सो आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं और किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम की हाईलाइट है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो उस पर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, थोड़ा सा सूट कर लिया जाए। आप क्या बोलोगे कि क्या बोल रही हो निव्या? सुनिए, आपको पता चल जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, कहना तो पड़ेगा मोहित सूरी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं अच्छे गानों से। मतलब मुझे आज भी याद है 2013 की बात है, ये गाना आया था, ये मूवी आई थी और इसने दीवाना बना दिया था सबको। लोग थिएटर्स में गए, वो रोए, वो इमोशनल फील किए। जी हाँ, खुशी भी हुई उनको, लेकिन इतना ज्यादा रोए कि थिएटर से बाहर आते आते लोगों के आंसू खत्म हो गए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ बात तो सही है, ये मूवी आशिकी 2 थी तो कुछ ऐसी, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स थे उन्होंने इसे इतना वाइब किया, इतना ज्यादा देखा कि ये मूवी जो है वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ दैट ईयर बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। और एक चीज तो मुझे पता चल गई है कि अगर आपकी गानों पर कमांड है तो आप कहीं ना कहीं अपनी मूवी को मेमोरेबल बना सकते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी मेनी एग्जांपल्स जहां पर मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा ग्रिपिंग नहीं थी, लेकिन वो म्यूजिक इतना ज्यादा बढ़िया था कि उसने उस स्टोरी में जान डाल दी, और वही होता है। जी हाँ, अब आशिकी 2 में भी अगर आप स्टोरी को देखोगे, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मूवी और इमोशनल करने वाली मूवी। मतलब एक इंसान जो है वो अपनी जान दे सकता है लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। मैं आज भी इस लॉजिक को समझ नहीं पाऊंगी, एंड I am so sorry if I have spoiled it for you, अगर आपने मूवी नहीं देखी है। बट हाँ, इतना ज्यादा स्पॉइल मैंने नहीं किया है, देखिए और फिर आप भी इमोशनल फील कीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई इस दुनिया में है जो कि हिंदी फिल्में देखता है और उसने आशिकी 2 नहीं देखी होगी। सो ये तुम ही हो वही गाना है जिसने अरिजीत सिंह को अरिजीत सिंह बनाया। अरिजीत सिंह इससे पहले भी बहुत खूबसूरत गाने गाते थे, लेकिन इस गाने ने अरिजीत सिंह को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उनको उतार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब मैं इसलिए भी इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि अरिजीत सिंह ने अपेरेंटली रिटायरमेंट जो है वो कर दी है, डिक्लेयर, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बट या दिस वॉज द सॉन्ग तुम ही हो जो आपने अभी सुना, इसी ने अरिजीत सिंह को अरिजीत सिंह बनाया था, और इसी ने आशिकी 2 जो कि ऐसी मूवी जो कि लिटरली आपको रुलाने के लिए बनी थी, फिर भी लोगों की भीड़ को थिएटर्स में पहुंचाया था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है।
1: भाई, तो मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। वही स्पेसएक्स ने रिलीज की है फुटेज एंड फोटोग्राफ्स ऑफ इट्स स्टारशिप रॉकेट जो कि फ्लोट कर रहा है ऑन द कोस्ट ऑफ क्रिसमस आइलैंड। जी हाँ, ट्यूसडे को अगस्त 18 को जो है वो स्पेसएक्स की तरफ से रिलीज की गई है कुछ फुटेज और स्टिल फोटोग्राफ्स उनके स्टारशिप रॉकेट की। जी हाँ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि स्पेसएक्स जो है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 24 दिन बाद समुद्र में जो है वो रिकवर कर लिया है अपना रॉकेट और उसकी लोकेशन जो है उन्होंने बताई है ऑफ द कोस्ट ऑफ क्रिसमस आइलैंड। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हाइट थी वो थी 400 फुट टॉल यानी कि 122 मीटर का ये स्टारशिप रॉकेट सिस्टम जो है ये ब्लास्ट हो गया था स्पेसएक्स के स्टारबेस कंपनी टाउन से और वहां से इसने अपने सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज बूस्टर को उन्होंने बताई है ऑफ द कोस्ट ऑफ क्रिसमस आइलैंड। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो हाइट थी वो थी 400 फुट टॉल यानी कि 122 मीटर का ये स्टारशिप रॉकेट सिस्टम जो है ये ब्लास्ट हो गया था स्पेसएक्स के स्टारबेस कंपनी टाउन से और वहां से इसने अपने सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज बूस्टर को भेज दिया था

उसने कंक्लूड किया स्टारशिप की री एंट्री को, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में थी। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में इसे भेजा गया था और उसके बाद इसने स्प्लैश डाउन किया है और अब 24 दिन बाद जो है इसे रिकवर किया गया है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि समुद्र में अगर ये गिरते हैं तो किसी को चोट नहीं लगती। वेल, जब भी रॉकेट जो है, किसी भी टाइप का रॉकेट या किसी भी टाइप का जो यू नो कैप्सूल, जैसे कि जब इंसान जाते हैं, जब ह्यूमंस भी स्पेस में जाते हैं और वापस से आते हैं, तो सब के सब जो है वो स्प्लैश डाउन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओशंस या सी में। क्यों? पानी में ही स्प्लैश डाउन क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा होता है और ऐसे में तेजी से आके फिर वो पानी में जाता है और उसके बाद फ्लोट करना शुरू कर देता है। अगर वही चीज धरती पे की जाए, यानी कि लैंड पे की जाए, तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। इसीलिए दैट इज द रीजन कि जब भी री एंट्री होती है किसी भी रॉकेट की, किसी भी कैप्सूल की, या कोई भी तरह का जो स्पेस जो है वो क्राफ्ट है, तो वो सीधा पानी में जाके स्प्लैश डाउन करता है। उसके पीछे यही रीजन है। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा रॉकेट जो है वो धरती पे आके गिरेगा तो कितना नुकसान होगा और क्या वो बच भी पाएगा? नहीं। बट या 24 दिन लग गए हैं स्टारशिप को खोजने में। जी हाँ, मतलब स्टारशिप जो है उसको मिलने में, क्योंकि स्पेसएक्स जो है उसने अपना मिशन तो कंक्लूड कर लिया था, जल्दी से ही हो गया था, लेकिन यहां पर रॉकेट कहां पर जाके गिरा था उसको ढूंढने में, उसको रिकवर करने में टाइम लगा और अब उसकी लोकेशन जो है वो पता चल गई है। उसको कोस्ट ऑफ क्रिसमस आइलैंड में जाके उसकी रिकवरी जो है वो की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। सो ये फुटेज अगर आपने नहीं देखी और अगर आपको इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में तो जरूर देखिए। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
1: का तुम का बताई, अब का समझाई।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुम न जिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।

मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक झलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है।

जी दोस्तों, मुझे नहीं पता आपने अभी स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे देखी है या नहीं देखी है, लेकिन ब्रांड न्यू इनकम जरूर टॉम हॉलैंड के बैंक अकाउंट में आ गई है। जी हाँ, सो टॉम हॉलैंड ने लिटरली पछाड़ दिया है सभी एक्टर्स को और वो बन गए हैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर एंड हाईएस्ट पेड एक्टर। एक्चुअली उनकी मूवी तो ग्रॉस कर ही रही है बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी खुद की पे की अगर बात करें तो ही हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2026। जी हाँ, और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो कि स्पाइडरमैन है आपके, यानी कि पीटर पार्कर के रूप में आपको फन करवाते हैं, आपको एंटरटेन कराते हैं। एंड टॉम हॉलैंड इज अ ग्रेट एक्टर एंड ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। कभी भी अगर आप टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू देखोगे ना, यू विल एंजॉय इट सो मच बिकॉज ही इज अ ग्रेट ग्रेट स्टोरी टेलर। सो टॉम हॉलैंड जो है उन्होंने लिटरली सबको पछाड़ दिया है, उन्होंने ओवरटेक कर लिया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वो रिकॉर्ड भी जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की थी एक साल में, और अब 2026 के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं विद एस्टिमेटेड अर्निंग्स ऑफ अराउंड $110 million। अब इतना तो बनता है भाई, उनकी जो नई मूवी है स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे, कैन यू गेस वो कितने कमाई कर चुकी है? जी हाँ, वो $2 billion से ऊपर की कमाई कर चुकी है, और ऐसे ही चलता रहा तो वो $3 billion भी कमा सकती है। और अगर उनकी एक और मूवी की बात की जाए यानी कि द ओडिसी, वो भी $1500 million यानी कि $1500 million के करीब जो है वो कमाई कर सकती है। मतलब 13 और 14 तो वो कर ही चुकी है, 15 भी हो सकता है जल्द ही, और ऐसा ही चलता रहा तो $3.5 billion, लाइक लिटरली आवी जोकिंग ओ व्हाट, आई डोंट नो कितना होता है वो पैसा। अगर मैं गिनने की कोशिश करूंगी तो शायद मुझे गिनती खत्म हो जाएगी, बट यू नो व्हाट, जब भी पैसे गिनने की बात आती है ना, मेरा मैथ्स एकदम अच्छा हो जाता है। वैसे बेशक कितना भी बेकार हो, कितना भी खराब हो, वैसे बेशक मैथ्स का पेपर देखते ही मेरे को बेहोशी का जो है वो आलम हो जाता हो, लेकिन जब भी पैसे गिनने की बात आती है तो आई कैन काउंट एज मच एज यू want me to। So, of course, पैसे यहाँ पर गिन रहे हैं टॉम हॉलैंड क्योंकि उनकी मूवीज अच्छा काम कर रही हैं। Congratulations, टॉम हॉलैंड, congratulations। अगर आप उससे 1-2 million खिसकाकर इधर भेजना चाहते हो तो मुझे कोई बुरा फील नहीं होगा। I will not mind। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks. And we're chosen by millions.
3: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
4: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha? Wo kya?
4: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
3: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
4: Are, receivers ab cash pickup, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल बिजली का
5: बिल
4: देखकर
5: हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com।
6: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 क्लब स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है यहाँ पर, और बर्थडे विश हम करने वाले हैं जबरदस्त एंड अ वेरी फेमस मेथड एक्टर। जी हाँ, एंड व्हेन आई से मेथड एक्टर यू नो व्हाट आई मीन, मतलब एक ऐसी एक्टिंग जिसको कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो कि इतनी रियल होती है, इतनी रियल होती है कि आप भी नहीं बता सकते कि क्या कोई इंसान एक्टिंग कर भी रहा था, क्या सामने वाला एक्टिंग कर भी रहा था कि वो रियल में ही ये सब कर रहा था। एंड हम बात कर रहे हैं रणदीप हुड्डा की। सो आई हैव टू से कि ही इज सच अ अंडररेटेड एक्टर, मतलब उनको बहुत ज्यादा मूवीज करनी चाहिए, इनको और भी ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इनका फैन बेस जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, और इनका एक अलग ही फैन बेस है। जी हाँ, मतलब रणदीप हुड्डा के जो रफ रफ से लुक्स हैं, उनके अलावा इनकी जो एक्टिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और वैसी एक्टिंग कर पाना किसी भी और एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल है। सो रणदीप हुड्डा, आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्बेन की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। सब यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे, और आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और सच में बहुत सारे पैसे भी कमाते रहें, और अपनी फिल्मों के साथ, अपने फैंस को एंटरटेन करते रहे। एंड आई हैव टू से, अभी कुछ वक्त पहले जब असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, यू नो, एज अ ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है इन्होंने बहुत ज्यादा किया था। ही इज नॉट जस्ट अ गुड एक्टर बट अ वेरी गुड पर्सन एंड दैट इज अ रेयर थिंग। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, अनसी के साथ अब जरा बात करते हैं खबरों की। जी हाँ, तो प्रोग्राम चल रहा है इवनिंग वाइब और यहाँ पर खबरों की तरफ रुख करने का वक्त हो गया है, यानी कि जानने का वक्त हो गया है दुनिया में क्या चल रहा है पॉलिटिकल फ्रंट पे, वॉर फ्रंट पे। सबसे पहले एक बहुत ही बुरी खबर आई है एक देश से, जी हाँ, जिसमें सोने की खदान धस गई और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR के पश्चिमी हिस्से में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान में भूस्खलन होने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये स्थानीय अधिकारी ने BBC को ये जानकारी दी। सामने आए वीडियो में खदान का एक हिस्सा लोगों के ऊपर गिरता दिखाई दे रहा है। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। कैमरून की सीमा से लगे शहर गरुआ बुलाई के मेयर अदमो अब्दोन ने BBC को बताया कि यह हादसा मंगलवार दोपहर को हुआ। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि खदान में भूस्खलन किस वजह से हुआ। अब्दोन ने बताया कि अब तक 107 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। हादसे में बचे एक खनिक सेड्रिक मंबागो ने AAFE को बताया कि जमीन पूरी तरह धस गई और लोग मलबे में दब गए। मेरे आपसे बात करने के वक्त भी कुछ लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं। कैमरून के ईस्ट रीजन के गवर्नर के मुताबिक मारे जाने वालों में कम से कम 3 लोग कैमरून के नागरिक थे। उनके शव अंतिम संस्कार के लिए वापस कैमरून भेजे जा रहे हैं। वहीं घायलों के इलाज के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। AAFP के मुताबिक घायलों और हादसे में बचे लोगों को खदान से करीब 50 किलोमीटर दूर CAR के बाबुआ शहर के अस्पताल से लाया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अधिकारियों ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। बाबुआ के सरकारी अभियोजक के हवाले से बताया गया है कि शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि खदान के अंदर कई सुरंगें धंसने की वजह से ये हादसा हुआ।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602.
1: 0411-022-602. Oh, Rahul, Virat, tere
2: case da ki hoya? Oh, yaar, main bahut worried ha. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Virat. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience ha. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience ha. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और यहाँ बात हो रही है अब खबरों की. जी हाँ, वहीं केन्या में हेलीकॉप्टर हुआ है क्रैश. इक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ, उनकी पत्नी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है. केन्या में बुधवार को हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ और उनकी पत्नी की मौत हो गई. हादसे में 5 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 7 लोगों की जान गई है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसे में 5 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं. इक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ मिशेल सेंसी कैंटोगी और उनकी पत्नी स्टेफनी हेलिहान उन 7 लोगों में शामिल थे जिनकी मौत सांबरू काउंटी में हुई. केन्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर लुइसावा के एक संरक्षित वाइल्डलाइफ इलाके के इवासो न्योरो नदी की तरफ एक हवाई यात्रा के लिए निकला था. इवासो न्योरो केन्या के कई इलाकों से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है. अथॉरिटी ने बताया कि केन्या के परिवहन मंत्रालय और एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन विभाग हादसे की जांच करेंगे. जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर किस वजह से हादसे का शिकार हुआ और उसके पीछे की पूरी परिस्थितियां क्या थीं.

जहाँ दोस्तों इसी के साथ रूस के मिसाइल हमले में कीव और आसपास के इलाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। जी हाँ, रूस की ओर से रात भर किए गए मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हमलों में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि गुरुवार को बड़े पैमाने पर किए गए हमले में इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। बचाव कर्मी अब तक एक व्यक्ति को मलबे से जिंदा निकाल चुके हैं। इस बीच रूस के यूक्रेन पर हमलों के बीच पोलैंड की सेना ने एहतियाती सैन्य विमान अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। कीव के मेयर विताली किल्टस्को ने बताया कि रात के हमलों में एक बच्चों का अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुआ है और अस्पताल की खिड़कियां टूट गई और आसपास कई कारों में आग लग गई। मेयर के मुताबिक दक्षिण पश्चिम कीव के सुलुमियांस्की जिले में स्थित एक औद्योगिक इलाके में भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। वहीं कीव क्षेत्र के ब्रोवरी जेले में हुए एक हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया। क्षेत्रीय गवर्नर तिमुर ताकंचोको ने इसकी जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रशासन ने रात में ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी कर दी थी। प्रशासन ने कहा था कि इलाके में हवाई सुरक्षा अभियान चलाए जा सकते हैं और वहीं रात भर क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से मिसाइल हमलों को लेकर लगातार नए अलर्ट भी जारी किए गए हैं।

0: गाजर जूस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे।
2: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word
3: Briswani। बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और यहाँ खबरों की बात हो रही है। अब खबरें तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की बात होने वाली है, जो कि पहले थोड़ा सा हम आपको बताने वाले कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, और फिर हम रोस्टिंग सेशन में चले जाएंगे, उसके बाद ही एकदम स्लाइड कर जाएंगे। सो अभी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ट्रंप रोस्टिंग सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। सो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व और बेहद कड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ईरान को समझौते के लिए सबसे ज्यादा मौका दिया, लेकिन ईरान इसका फायदा उठाने में नाकाम। उन्होंने कहा, आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। ये बड़े स्तर पर आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग थलग करने की मुहिम होगी। ट्रंप ने पहले के अपने बयानों को दोहराते हुए कहा कि ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबार, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियों के जरिए ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद करेगा, उसे भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने खासतौर पर तेल की तस्करी, तेल टैंकरों की अदला बदली, नकदी के जरिए पैसे भेजने और मनी एक्सचेंज कंपनी के इस्तेमाल और जहाजों को फर्जी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करने जैसी गतिविधियों का जिक्र किया है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ पर आर्थिक हमला, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या बेवकूफी और क्या बच्चों वाली हरकतें मिस्टर ट्रंप कर रहे हैं। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स ट्रंप रोस्टिंग सेशन ऑफिशियली शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो जो इंसान पूरा दिन मैकडी खाता है वो क्या अच्छे फैसले लेगा, और किसने बना दिया इसे यूएस का प्रेसिडेंट। जी हाँ, मिस्टर ट्रंप को यूएस का प्रेसिडेंट किसने बनाया, मतलब ये क्या लोगों को सिखाएगा और बच्चों को सिखाएगा कि सुबह उठते हुए मैकडी खाओ, जी हाँ दोपहर को मैकडी खाओ, रात को फिर से मैकडी खाओ और कोक पियो। जी हाँ, यही सब ये सिखाएगा क्योंकि ये इंसान खुद ही ये करता है। जी हाँ, सो आरएफके ने कहा है कि ट्रंप का प्लेन जो है वो भरा होता है मैकडी से, मतलब ये इंसान जो है 80 का हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैकडी खाने में ही लगा हुआ है। अब वहां के बच्चे जो है और पूरी दुनिया के बच्चे इस इंसान से ना सीखे, नहीं तो वो भी बोलेंगे अरे आप हमें क्यों रोक रहे हो, यहाँ पे तो यूएस का प्रेसिडेंट जो है मिस्टर ट्रंप भी मैकडी खाता है और वो पूरी तरह से हेल्दी है, अरे भाई उसमें ना लगो। जी हाँ, दूसरी चीज, एक और बहुत ही फनी चीज जो मिस्टर ट्रंप ने की है वो ये कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया हिस्सा बता दिया, मतलब अमेरिका अब गल्फ में पहुंच गया है और अपेरेंटली अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब अमेरिकन लैंड या प्रॉपर्टी जो है वो बन चुकी है। अब एग्जैक्टली देखें तो वो लैंड है नहीं, वो एक समुद्री रास्ता है और समुद्र है उस जगह पर, सो वो इलाका जो है वो अब अमेरिका का हो गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं, न्यू टेरिटरी ऑफ अमेरिका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अमेरिकन प्रॉपर्टी, या दैट्स व्हाट ही सेड। और उन्होंने मैप भी शेयर किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और उस पर लिखा हुआ था या प्रॉपर्टी ऑफ अमेरिका। आप लोग बोलोगे हैं ये मतलब इंसान खिसका हुआ है क्या, यहाँ पे ईरान कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बता रहा है। मुझे पता है जब रात को आप उठ के आधी नींद में ट्वीट करते हो तो ऐसे ही ट्वीट होते हैं। जी हाँ, उसके बाद ईरान ने भी बाउंस बैक किया, ईरान ने कहा कि अच्छा, तो ईरान ने कह दिया कि अच्छा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी प्रॉपर्टी है तो कैलिफोर्निया अब से हमारी प्रॉपर्टी है फिर। जी हाँ, तो कैलिफोर्निया अब ईरान की स्टेट है भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारी, तो ईरान की स्टेट नहीं होगी कैलिफोर्निया। अब देखो मतलब ईरान जो है वो ऐसा बाउंस बैक कर रहा है और ऐसा रिटेलिएट करता है कि लोग जो है वो हंस हंस के गिर जाते हैं। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा, बट किसी ने तो ये भी नहीं सोचा था कि ईरान पर हमला होने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की नाक में दम कर देगा। लेकिन अब ट्रंप सोच रहे होंगे कि क्या ही कर दिया मैंने, मतलब मैंने क्यों कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी प्रॉपर्टी, अब ये देखो हमारे कैलिफोर्निया पे अपना कब्जा करके बैठ गया। मतलब कब्जा करा तो किसी ने भी नहीं है, बट ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमने कब्जा कर लिया है। जी मतलब कहां से, मतलब कौन सा मार्वल या डीसी इस इंसान को अपनी मूवीज में क्यों नहीं लेते। मतलब ऑफकोर्स ही इज नॉट अ गुड एक्टर, बट द थिंग इज कि ऐसी जैसी ये फैंटेसी वाली चीजें करते हैं, इनकी जगह जो है वो फैंटेसी मूवीज में ही है, यहाँ नहीं है। मतलब एक कंट्री का प्रेसिडेंट ये सब कर रहा है, ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू से। और कभी कभी मुझे अमेरिकन लोगों को देखकर उन पे इतना तरस आता है, वाओ यू नो व्हाट, यू गाइस आर सो सो सो सो सो सो पैथेटिक। मतलब क्या किया आपने, इस इंसान को चूज कर दिया, क्या बनेगा आप लोगों का। जी हाँ, जो मैकडी खाता है और आपके बच्चों को भी मैकडी खाना सिखाता है पूरे सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी के साथ बहुत ही जबरदस्त सी चीज अमेरिका ने कर दिखाई। अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं और गेस करने को कहूं तो क्या आप उसे गेस करना चाहेंगे? चलिए आप गेस मत कीजिए, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। सो अमेरिका ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, लेकिन अगर हम इसे कहें कि ये अच्छी हिस्ट्री है या बुरी हिस्ट्री है तो ये हम कहेंगे बुरी हिस्ट्री है। मतलब आपको तो पता ही है अमेरिका जो है और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही है हमेशा से। लोगों की कंट्रीज में जाकर हस्तक्षेप करना, उनके ऑयल पर कब्जा करना, उनकी लैंड पे कब्जा करना, उनको अपने तरीके से काम ना करने देना, ये तो हमेशा से उनका रहा है। लेकिन अमेरिका ने खुद के लिए एक बहुत ही बड़ी और एकदम लेजिटिमेट हिस्ट्री क्रिएट की है, एंड दैट इज अ $40 trillion डेट। जी हाँ, आपने सही सुना, दैट इज सो फनी, सो फनी दैट आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। मतलब $40 trillion, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली $40 trillion, इट्स $40.047 trillion। मतलब इतना डेट कोई भी कंट्री कभी इतने कर्जे में आई ही नहीं है। अमेरिका ने वो काम कर दिखाया जो कि कभी हुआ ही नहीं। 9 साल में इन्होंने अपना डेट जो है वो डबल कर लिया है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हैं इनके पैसे? अरे ऑफकोर्स लड़ाइयों में जा रहे हैं, लोगों की गवर्नमेंट्स को हटाने में जा रहे हैं, ये सब करने में ही तो जा रहे हैं, और तो और कहीं पे नए आतंकवादी पैदा करने में जा रहे हैं। सो ऐसे में अमेरिका के लोगों का क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री में एक नया कारनामा उन्होंने कर दिया है, और वो है $40.047 trillion। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट $billion, माइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट $trillion, एंड दैट्स अ लॉट। जी हाँ, आई रियली वांट टू आस्क एनी अमेरिकन पर्सन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? वो बेचारे बोलेंगे हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमारी तरफ से तो टैक्स जा रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है हमें नहीं पता। वेल, कहाँ जा रहा है ये हमें पता है, ईरान में जा रहा है, इराक में जा रहा है, और बहुत सारी और जगहों पर जा रहा है। मतलब अमेरिका इतना दयालु बनता है, दयालु वैसे वाले इलाके मतलब तरीके से नहीं बनता है जैसे कि उसे बनना चाहिए, वहां वाले तरीके से तो ये अपनी दयालुता हटा रहा है। मतलब जहां जहां ये चैरिटी करते थे उस चैरिटी के फंड्स को अब मना कर दिया है, हम नहीं करेंगे। अफ्रीका में जाता था इनका फंड उन बच्चों के लिए जो उनके पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, जिनको खाना नहीं मिलता था, और उस फंड से उनको खाना मिलता था, उसमें कटौती कर दी है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? अमेरिकन टैक्स पेयर, लिटरली आई वांट टू आस्क यू, कहाँ जा रहा है आपका पैसा? $40 trillion डेट, मुबारक हो आप सबको। आई नो यू, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू गाइज आर नॉट एट फॉल्ट, इट्स योर country, it's your politics, it's your government. Jee haan, but $40 trillion, I don't know what to say to that. Kitne zeros hote hain 40 trillion mein, itne please aap mujhe batayega. Pehle ek aur gana aap sab ke liye meri taraf se.

0: गाजर जूस।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
13: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
12: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
13: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
12: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0.
14: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
15: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
14: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
15: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है
16: परिवार अते घर नु तैयार करने दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
17: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी एनीवे के साथ। दोस्तों, एक स्टोरी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो इतनी दिलचस्प है कि मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। जी हाँ, सो एक फेक लॉयर, जी हाँ, एक फेक लॉयर जो कि काफी ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि उसने फेक लॉयर होने के बावजूद केसेस लड़े। जी हाँ, 26 केसेस लड़े और वो जीत भी गया। और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि वो तो फ्रॉड है, वो तो रियल लॉयर है ही नहीं, उसने किसी और लॉयर के पोर्टल को जो है वो हाईजैक किया था और उसके बाद जो है उसकी आइडेंटिटी से वो केसेस को लड़ रहा था। जी हाँ, और जब लोगों को पता चला और जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपना ही केस लड़ा फिर से बाहर निकलने के लिए जेल से, और वो उसको भी जीत गया। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि What are you talking about, Nivea? What is this? Like, is this some kind of a joke? No. It's not a joke. It's a real story. So, ये viral story जो कि एक fake lawyer की है, जिसने 26 cases जो हैं वो जीत लिए, is far more complicated than social media makes it sound. जी हाँ. So, Brian Mavenda Nijagi, जी हाँ, ये इस बंदे का नाम है और report किया गया है कि ये बंदा जो है वो allegedly जो है वो qualified advocate नहीं था। लेकिन यहां पर ये केनियन यानी कि केनिया की एक स्टोरी है, केनियन एडवोकेट यानी कि एक फेक केनियन एडवोकेट का जो है वो पोर्ट्रे कर रहा था वहां पर ये a role and it's not the role role, I mean it's the real role. मतलब वो सच में ये सब कर रहा था. और फिर वहां पर ऐसा कहा गया कि उस बंदे ने लिटरली 26 केस जीत भी लिए. मतलब इतनी क्या ब्रिलियंस है इस फेक गिरी में कि बंदे ने रियल केस भी जीत लिए. मतलब ठीक है, अगर वो नकली लॉयर होता और नकली लॉयर होने के बावजूद अगर उसके पास जो है मतलब ऑफकोर्स डिग्री तो नहीं थी, तो डिग्री नहीं थी तो वो केस जीत कैसे गया. इसलिए कहते हैं कि डिग्रीज आपको नहीं बनाती, आपका टैलेंट आपको बनाता है. आप लोग बोलोगे निवेश शर्मा वाह तो तुम उसको एडवोकेट कर रही हो, अब तुम भी इसकी एडवोकेट बन रही हो. नो, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि समटाइम्स जो है वो टैलेंट जो है वो डिग्रीज को पीछे छोड़ देता है. एंड आई गेस दैट इज द सिचुएशन हियर. जी हां, 26 केसेस जीतना वो भी फेक डिग्री और फेक आइडेंटिटी के साथ, इट्स नॉट इजी. दैट शोज कि बेशक आपके पास डिग्री नहीं है, बेशक आपकी आइडेंटिटी भी असली नहीं है, लेकिन आप में टैलेंट जो है वो असली है. और आप ये सोचो कि जब लोगों को पता चल गया, जब पुलिस ने सोचा अच्छा इसको मजा सिखाते इसको जेल में डालो, तो उस बंदे ने कहा अच्छा जेल में डालोगे तो ठीक है, मैं तुमको अब अपना केस लड़के दिखाता हूं. और वो बंदा सच में अपना केस लड़ता है और जीत भी जाता है. मैं तो कहती हूँ लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है. अगर वो उस टैलेंट को यूज करने पे आए ना तो ह्यूमैनिटी का उद्धार हो जाएगा सच में. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। कहाँ हो आप सब? अगर आप सुन रहे हो रेडियो तो जल्दी से अपनी फरमाइशों के साथ रेडी हो जाइए। एंड व्हेन आई से फरमाइशों के साथ रेडी हो जाइए, आई मीन पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइशों से किस साथ रेडी हो जाइए, बिकॉज अब पुराने गाने हम पूरी तरह से प्ले करने वाले हैं, पुराने किस्से आपको सुनाएंगे और बहुत सारी और प्यारी प्यारी चीजें भी आपको बताएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से पुराने गानों की फरमाइशों के साथ आ जाइए। जो गाना मैं इस सेगमेंट को शुरू करने के लिए प्ले करने वाली हूँ, मतलब स्टार्टिंग में प्ले करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसका नाम है तारीफ करूँ क्या उसकी। रफी साहब के इस खूबसूरत से गाने के साथ हम शुरुआत करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि अगेन खूबसूरत समा होने वाला है और खूबसूरत किस्से भी होने वाले हैं। तो आ जाइए आप भी अपनी फरमाइशों के साथ। और ये रहा सबसे पहला गीत।

डेफिनेटली भाई, अगर ये गाना आपने किसी को प्रपोज करने के लिए गा दिया तो प्रपोजल का सक्सेस रेट जो है वो 100% हो जाएगा। मतलब तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, वाह वाह वाह। कोई मुझे ये बोले ना तो सच में मेरा भी दिल जो है वो डोल जाएगा। अब आप लोग बोलोगे हाँ हाँ निवेश शर्मा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये खूबसूरत से गाने के बाद मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, ये किस्सा है एक बहुत ही फेमस मूवी का। जी हाँ, और मूवी का नाम था हाथ की सफाई। अब इसका जो किस्से का जो बेसिकली जो स्टोरी है मेन, वो ये रफी साहब और लता जी इसमें एक बहुत ही फेमस ड्यूएट गाने वाले थे, और जिस हीरो पर ये ड्यूएट जो है वो फिल्माया जाना था वो थे विनोद खन्ना। लेकिन जब विनोद खन्ना को पता चला कि ये गाना जो है जो उन पर फिल्माया जाने वाला है इसे रफी साहब गा रहे हैं, तो वो अड़ गए। वो कहते हैं कि मेरा वाला गाना ना प्लीज आप रफी साहब से मत गवाइए, आप किशोर दा से गवाइए। अब आप लोग बोलोगे कि एलओ जी, एक ही बात हो गई, मतलब है ना, किशोर दा की आवाज डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, बट रफी साहब की आवाज को कोई कैसा मना कर सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा और भी बार हुआ है जब किसी ने ये कहा हो कि हमारी आवाज किशोर दा बनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन किसी ने ये भी कहा है कि हमें सिर्फ रफी साहब की ही आवाज चाहिए। सो ये हमेशा से होता आया है क्योंकि किशोर दा और रफी साहब दोनों ही बहुत ही मजे हुए कलाकार थे। अब विनोद खन्ना ने ये कह तो दिया, लेकिन उनके जो डायरेक्टर्स थे, उनके जो प्रोड्यूसर्स थे, इनफैक्ट उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि कल्याण जी आनंद जी थे, वो भी नहीं माने। उन्होंने कह दिया कि देखो सीधी सी बात है, आप हीरो हो और आप बहुत दिग्गज हीरो हो, हम आपकी बात मानते हैं बाकी सारी चीजों में, लेकिन रफी साहब को इस गाने से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि हमें पता है इस गाने के साथ असली जस्टिस सिर्फ और सिर्फ रफी साहब कर सकते हैं। बस फिर क्या था, रफी साहब ने और लता जी ने वो गाना गाया, और टर्न्स आउट कि रफी साहब का गाना गाया हुआ वो इतना ज्यादा हिट हो गया, इतना ज्यादा हिट हो गया कि अब आप सोच भी नहीं सकते कि रफी साहब के अलावा उसे कोई और गाता तो कैसा होता। और उसके बाद विनोद खन्ना ने भी मान लिया कि मैं गलत था, इसे रफी साहब से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं गा सकता था, और रफी साहब की आवाज ही इसके लिए पूरी तरह से बेस्ट थी। जी हाँ, गाना कौन सा था कि आप सोच रहे हैं इसके बारे में? वेल, गाना था वादा कर ले साजना। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बात।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों जब भी बात होती है खूबसूरत गानों की तो ऑफकोर्स हम बात करते हैं किशोरदा की, रफी साहब की, लता जी की, आशा जी की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ गाने जो है वो ऐसे हैं जिनको जिसने गा दिया उसके बाद उनको कोई और गाए, चाहे फिर वो कितना भी फेमस सिंगर क्यों ना हो, वो सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कैसे रफी साहब का वो गाया हुआ गाना जो अभी आपने सुना, वादा कर ले साजना, वेल ऑफ कोर्स विनोद खन्ना ने पूरी कोशिश की कि किशोरदा उनके लिए ये गाना गाएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ऐसे सिर्फ और सिर्फ विनोद खन्ना नहीं थे, इनफैक्ट देवानंद साहब का भी मानना था कि उनकी आवाज जो है वो किशोरदा ज्यादा अच्छे से जो है वो पर्दे पर उतारते थे। मतलब उनकी आवाज अगर किशोरदा बने तो ज्यादा अच्छा होता था। इसी लिस्ट में आगे नाम है राजेश खन्ना का। जी हाँ, राजेश खन्ना और किशोरदा ने एक दूसरे के साथ बहुत लेजेंडरी गीत जो है वो किए हैं। उनकी फिल्मों में ऑलमोस्ट सारे गाने जो हैं वो किशोरदा के होते थे, और ये बात उन्होंने मान ली थी कि अगर मुझे अपनी मूवी को हिट करवाना है, वेल ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि रफी साहब ने उनके लिए गाने नहीं गाए, रफी साहब ने भी उनके लिए बहुत हिट गाने गाए हैं, लेकिन ये कहना कि हमारी आवाज और फ्लेक्सिबिलिटी जैसी हमें चाहिए वो किशोरदा ज्यादा अच्छा एलिमेंट लेकर आते थे उसमें, इसमें राजेश खन्ना भी बहुत ऊपर आते थे। तो देवानंद साहब, राजेश खन्ना और अभी आपने विनोद खन्ना के नाम का भी जिक्र हमारे मुंह से सुना, यहां पर ये सारे के सारे लोगों का मानना था कि हम लोगों की आवाज पे सिर्फ किशोरदा की आवाज जो है वो ज्यादा अच्छी बनती है। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ये बात तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि रफी साहब ने देवानंद साहब को कितने लेजेंडरी गीत दिए हैं, है ना, मतलब कितने लेजेंडरी गीत जो है रफी साहब ने उनके लिए गाए। लेकिन वही हम रफी साहब की बात करें तो शमी कपूर, मनोज कुमार एंड राजकुमार, ये सबका मानना था, मनोज कुमार को ऑफकोर्स मुकेश की आवाज ज्यादा पसंद थी, लेकिन शमी कपूर साहब और साथ में राजकुमार साहब ये तो मानते थे कि इनके पिक्चर में अगर कोई गाना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रफी साहब को होगा, मतलब और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ रफी साहब चाहिए। तो ऐसा हमेशा से होता आया है और हमेशा आगे भी होता रहा है, मतलब आज भी ये हो रहा है। लेकिन ये कह पाना इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट को कि इनकी आवाज मुझ पे सूट नहीं करेगी, फिर चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो, इसके लिए गट्स चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, है वफा क्या एक दिन बतला दूंगा इस दुनिया को। क्या बात है, मतलब ऐसे लिरिक्स लिखना, भाई भाई जितनी तारीफ हो ऐसे लिरिसिस्ट की उतनी कम है। मतलब क्या बात है, वफा इज लॉयल्टी एंड लॉयल्टी इज अ ग्रेट वर्चू, आई थिंक वी ऑल शुड पजेस इट। जी हाँ, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जो मैं गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ये लास्ट में, ये एक फरमाइशी गीत है और ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाना है नफरत की दुनिया को छोड़ के। अच्छा, इस गाने के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये गाना जो है वो रफी साहब का गाया हुआ है, लेकिन ये जो मूवी है हाथी मेरे साथी जिसका ये गाना है, इसके सारे के सारे गाने किशोर दा ने गाए हैं। किशोर दा ने ही इसे भी गाना था और उन्होंने बहुत कोशिश की, मतलब बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बहुत रिहर्सल की, फिर भी किशोर दा इस गाने को नहीं गा पाए। फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स को रफी साहब को बुलाना पड़ा, रफी साहब को कहना पड़ा कि रफी साहब प्लीज आप ये गाना गाइए, और रफी साहब ने बिल्कुल हंसते हंसते उस गाने को गाया, और क्या खूबसूरत तरीके से गाया। मतलब हंसते हंसते वो आए, लेकिन गाना जो है वो ऑफकोर्स थोड़ा सॉलिड है और थोड़ा सा सीरियस है। सो या ऐसे ही, मतलब किशोर दा के गाने थे पूरी पूरी की पूरी फिल्म में, लेकिन एक गाने पे सुई अटक गई और वहां पर रफी साहब ने ही उसे आगे बढ़ाया कहानी को। जी हाँ, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और प्यारे प्यारे किस्से भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। एंड टू ऑल माई लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM के लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Hi, this is Amitabh Bachchan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan,
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी
12: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
14: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
15: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
14: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
15: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
14: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
16: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
17: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
16: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
17: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
18: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है, ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
19: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
19: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: लगता रूम में रह गया।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: 1701 AM. मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। 2032 ओलंपिक विक्टोरिया पार्क प्रोजेक्ट। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विक्टोरिया पार्क में नए स्टेडियम और एक्वेटिक सेंटर के डिजाइन की तस्वीरें साझा की हैं। हालांकि पार्क की हरियाली को बचाने के लिए स्थानीय नागरिक लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं पब्लिक कंसल्टेशन ओपन। विक्टोरिया पार्क लेगेसी प्लान के तहत क्वींसलैंड सरकार ने आम जनता से सुझाव और फीडबैक मांगना शुरू कर दिया है ताकि विकास कार्य के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके। वहीं सड़क सुरक्षा अभियान पर जोर। क्वींसलैंड पुलिस ने सड़कों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में ब्रिस्बेन के आसपास के इलाकों में हुए सड़क हादसों के बाद ट्रैफिक चेकिंग अभियान सख्त कर दिया गया है। इसके साथ सिटी काउंसिल का बजट और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने चालू वित्त वर्ष में सड़कों के सुधार के लिए $110 मिलियन और बस, फेरी व ब्रिस्बेन मेट्रो सेवाओं के लिए $213 मिलियन की राशि समर्पित की है। वहीं ब्रिस्बेन में लग्जरी लिविंग का बदलता दौर। ब्रिस्बेन 2032 की तरफ बढ़ते हुए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर और इको फ्रेंडली अपार्टमेंट शहर की नई पहचान बन रहे हैं। इसी के साथ वाटरफ्रंट ब्रिस्बेन प्रोजेक्ट का काम जारी। ईगल स्ट्रीट पियर के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस नए वाटरफ्रंट टावर और पब्लिक स्पेस से ब्रिस्बेन के रिवर फ्रंट का पूरा लुक बदलने वाला है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले साउथ जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोवलम में 31वीं साउथ जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट का नया सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों को उनका सोशल मीडिया परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड सौंपा गया है। इसी के साथ एनटीए का नया सुरक्षा फ्रेमवर्क। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब विषय विशेषज्ञों का कार्यकाल छोटा किया जाएगा और एयर गैप्ड सिस्टम लागू होगा। इसी के साथ हाईकोर्ट का राहत भरा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक विधवा महिला के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए सरकार द्वारा ₹1,00,000 की रिकवरी का आदेश रद्द कर दिया है। इसी के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस की नई सौगात। बिहार और गुजरात के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अहमदाबाद भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 26 अगस्त से अपनी नियमित सेवा शुरू करने वाली है। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ब्रिटेन शिफ्ट हो सकते हैं हैरी और मेगन। जी हां, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल अमेरिका छोड़कर इस महीने के अंत तक ब्रिटेन में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में कर्ज का नया रिकॉर्ड। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। इसी के साथ अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अमेरिका के कई हिस्सों में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मियामी में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया जबकि ओकलहोमा में पारा 112 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया। इसी के साथ नेपाल की राजनीति में हलचल। नेपाल के संसद अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री बालन शाह को 26 अगस्त को सदन के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पिछली 39 बैठकों में से बालन शाह सिर्फ 5 में ही शामिल हुए हैं। वहीं यूक्रेन में राजनीतिक बहस। यूक्रेन में युद्ध के माहौल में बीच चुनावी चर्चा तेज हो गई है। पूर्व रक्षा मंत्री ने देश में मौजूदा हालातों के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव कराने की मांग रखी है। वहीं इटली में 2500 साल पुराना ऐतिहासिक कुआं। इटली में पुरातत्ववादियों को 2500 साल पुराना एक पवित्र कुआं मिला है। इसके अंदर प्राचीन एट्रिस्कन अनुष्ठानों की कांसे की वस्तुएं और इंसानी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। नीदरलैंड्स के अम्स्टेलविन में खेले गए मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। वहीं भारत ने गोल टेस्ट जीता। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। मानव सुथार की घातक स्पिन और गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की दूसरी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वहीं BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत का जलवा। बैडमिंटन में भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिश्रित युगल जोड़ी ने सीधे गेम में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं 2032 ओलंपिक्स में तैयारियां तेज। जी हां, ओलंपिक आयोजकों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के साथ नए खेलों और स्पर्धाओं को शामिल करने की पात्रता प्रतिक्रिया का काम तेज कर दिया है। ब्रिस्बेन 2032 को और भी रोमांचक बनाने के लिए कई नए स्पोर्ट्स जोड़े जा सकते हैं। इसके साथ महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हराकर अपनी ग्रुप टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
5: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पालन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन।

हां जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसी पाणे होए। देखो वड्डे वड्डे एक्टर्स ते सेलिब्रिटीज ने ना एक समय ते दे बाद खुद नू नवा लुक देण दे लई वेट लूज कीता, पर जरूरत तो ज्यादा पतला हो जाण दी वजह नाल कईआं नू तां तारीफां तो ज्यादा ना ट्रोलिंग दा सामना करना पिया सी। उन्हां बारे ही मैं सोचा कि क्यों ना गल करा, क्योंकि अजकल बहुत ज्यादा क्रेज वध चुकिया है लोगों के पतले होने का। हर कोई चाहता है कि मैं पतला होवां, बहुत पतला होवां। बहुत पतला होने के चक्कर कई कई स्केलटन हो जाते हैं, कई वधिया लगते हैं, पर कई मतलब ट्रोलिंग का शिकार होना पैंदा है। तो मैं अज उन्हां ही एक्टर्स बारे दसूंगी जो ज्यादा पतले हो गए थे, उन्होंने ट्रोल किया गया उन्होंने उही पतली लुक करके।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पे सोने वन सर वन एम जी आप चे संदेश अलग दिन आप बने हुए हो। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दिया तस्वीर ते वीडियो ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदों अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुख गए तो कंपैरिजन वीडियोज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से छा गए कि पहला की सी हुण की बन गए है कि नहीं। तो उस तो बाद उन्होंने काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जिम मैं तुम्हें पहला दस्या कि बहुत सारे एक्टर्स है कि नहीं। तो उसी तरह के सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं है जिन्होंने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्होंने चली हैगी बहुत सारे है उन्होंने बारे दस दिया तुम एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन

0: एनर्जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। अगला जिहड़ा नाम हैगा वह है राम कपूर का। टीवी की दुनिया में कामयाबी के झंडे गड्ढण के नाल नाल राम कपूर ने फिल्मों में भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखन लग पिया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी जिथे उन्होंने काफी ज्यादा प्यार मिले।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज़ है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश बने हुए। अगला नाम है जी करण जौहर का। बॉलीवुड की दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दित्तियां बल्कि हिंदी सिनेमा नू कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नू असी शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है, पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स से मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैन का आरोप लग गया। करण जौहर फंकी लुक के नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

हां जी रेगो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नू वी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजिशन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मों के लिए घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर जद वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस के लिए ट्रोलिंग चल चुके हैं।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
4: Secret. Hey, yo, Sean.

0: आए तो असी एक्टर्स की गल पर बहुत सारे एक्टर्स से एक्ट्रेस स्पेशली अजिहां हैगियां ने जिन्हां ने जदों वेट लूज कीता तां बकमाल लगन लग गया। उस विच सब तो पहला नाम तो हाल फिलहाल की घड़ी तुहाडे जुबान ते शहनाज गिल दा आया होगा क्योंकि बिग बॉस दे विच जदों शहनाज गिल देखी सी तां बहुत बल्कि जी ते क्यूट सी क्यूट सी बट हुण वो हॉट हो गई है क्योंकि वेट लूज किया है तो बहुत ज्यादा स्लिम हो गई है। ज़रीन खान हो गई तो फिर सारा अली खान दी पुरानी ते नवीं वीडियोस तस्वीर जब तुसी देखते हो तो पता लगता है कि डिजास्टर तो नहीं बहुत ज्यादा शानदार उन्होंने चेंज आया है। कि तुहानू किहड़े एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा चंगा लग्या कि ट्रोल नहीं होना चाहिए सी ते किहड़ी एक्टर लगती है कि एक्ट्रेस कि ए पतली होके चंगी नहीं लगी तो जरूर सानू दस्यो जुड़ो साडे नाल। तो फिलहाल पहला ही की सुनो
1: जदों बोला

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: ट्रोलिंग दा शिकार नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वधिया सी, ते केड़ी एक्ट्रेस तुहानू लगता है कि उसनू स्लिम होने की लोड़ नहीं, बल्कि ही ज्यादा वधिया लगती सी, जरूर दसो, जुड़ते रहो साडे नाल। ते मैं तां इही वादा करके चली आं जी कि कल करदे मुलाकात, रुख अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash you, boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash you.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

सौ पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकार।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

ना बदला में, ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: Pourquoi?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एक होयो भाया। नाम से डोनाल्ड ट्रंप और हरकत से डोनाल्ड डक नजर आया, तो मैंने कहा वो डोनाल्ड

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: मुझे अभी।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो

ना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ। आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में, जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ। लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेजू पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो अपन अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े। वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोतों, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 107.1 FM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

हाँ जी, तो भाई सबसे पहले बात करेंगे ब्रिस्बेन की। आज ब्रिस्बेन में भाई सुबह का मौसम काफी प्लेजेंट रहने वाला है। फ्राइडे के लिए फोरकास्ट मोस्टली सनी है, यानी कि दोस्तों मॉर्निंग ड्राइव, वॉक या फिर कॉफी रन के लिए मौसम काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर आप आज काम के लिए निकल रहे हैं, स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं या फिर बस सुबह की वॉक पर जा रहे हैं, ब्रिस्बेन की ये सनी मॉर्निंग एंजॉय जरूर कीजिए। और हाँ, सनस्क्रीन भूलना मत, वो बहुत जरूरी है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। सो अब एक बड़ी ऑस्ट्रेलिया की अपडेट है भाई। ऑस्ट्रेलिया की रग्बी सेवन्स टीम को ब्रिस्बेन शिफ्ट करने की बड़ी प्लानिंग सामने आई है। टीम से ब्रिस्बेन के बालीमोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मूव होंगी, जिसे 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी के हिस्से के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग फैसिलिटीज के साथ जो है एक नया मल्टीपर्पज स्टेडियम भी शामिल है। यानी कि ब्रिस्बेन आने वाले सालों में भाई सिर्फ टूरिज्म और लाइफस्टाइल के लिए नहीं, बल्कि मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हब के रूप में भी और बड़ा नाम बनने वाला है। सो ब्रिस्बेन वालों तैयार रहिए, क्योंकि 2032 अभी दूर है, लेकिन भाई प्रिपरेशंस जो है अभी से फुल स्पीड में है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

0: हाँ जी, तो अगर आप स्पोर्ट्स की बात करिए तो ब्रिस्बेन लायंस के फैंस के लिए फ्राइडे बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ब्रिस्बेन लायंस का मुकाबला कॉलिंगवुड से एमसीजी में है और ये मैच फाइनल्स पोजीशन जो है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ब्रिस्बेन ने अपने जो स्क्वाड है उसमें टाई गैलोप को भी वापस शामिल किया है, जबकि डैनियल एनेबल को बाहर किया गया। तो लायंस फैंस फ्राइडे नाइट्स को ना स्पोर्ट लाउट होना चाहिए, क्योंकि फाइनल्स के करीब आते आते ना हर गेम की इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती ही जा रही है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।
1: अरे अरे

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। सो दोस्तों, अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं क्योंकि मॉर्निंग बिना एंटरटेनमेंट में थोड़ी सी ना बोरिंग लगती है। आज के इंटरनेशनल म्यूजिक न्यूज में बड़ा नाम है भाई कहलानी। जी हाँ, जो कहलानी है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी 2027 एरिना टूर अनाउंस की है। उनका ऑस्ट्रेलिया टूर जो है फरवरी 2027 में होगा और ये उनके नए सेल्फ टाइटल एल्बम के बाद हो रहा है। और म्यूजिक लवर्स के लिए भी एक और एक्साइटिंग अपडेट है। ब्रियान एडम्स ने अपनी जो रोल विद द पंचेस वर्ल्ड टूर है उनको 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए नए डेट्स ऐड किए हैं। तो दोस्तों, अगर ब्रियान एडम्स और कहलानी जो है वो आपकी प्लेलिस्ट में है तो आज का दिन ऑफिशियली ना म्यूजिकल हो गया है, राइट? तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, आप थोड़ी सी सीरियस लेकिन दिल से बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तब मैं बहुत खुश रहूंगा या रहूंगी, जब पैसे ज्यादा होंगे तब खुश रहूंगा, जब लाइफ परफेक्ट होगी तब इंजॉय करूंगा। लेकिन लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों, सच तो ये है, लाइफ कभी भी पूरी तरह से ना परफेक्ट नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हम अपने आप को ही डिमोटिवेट कर देते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा ही चलता रहेगा दोस्तों, इसीलिए आज जो आपके पास है उसकी वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। एक अच्छी सुबह, एक कप कॉफी, एक प्यारा मैसेज, परिवार की आवाज, या फिर बस ये फीलिंग्स की, जी मैं आज फिर एक नया दिन जी रहा हूँ, या मैं आज फिर एक नया दिन जी रही हूँ। कभी कभी दोस्तों, हैप्पीनेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, बस एक छोटी सी ना ग्रैटिट्यूड होती है। सो इसे एंजॉय ज़रूर कीजिए, और हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड का जो है, अपने आप में एक हैप्पीनेस ढूंढें और हर एक सेकेंड की वैल्यू ज़रूर करें। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपको टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम मिलने वाले हैं। लेकिन चलते चलते कुछ क्विक अपडेट्स सोची कि दे ही देती हूँ। दोस्तों, लाइव एंटरटेनमेंट ऑस्ट्रेलिया में लगातार एक्सपेंड हो रहा है और ब्रिस्बेन भी मेजर टूरिंग एक्ट के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉप बनता जा रहा है। आपको बता दें कि क्वींसलैंड में लाइव थिएटर और लोकल प्रोडक्शंस भी काफी एक्टिव है। टूवुम्बा में और फुटलूज प्रोडक्शन 21 यानी कि आज और कल जो है 21st ऑफ अगस्त और 22nd ऑफ अगस्त को होने वाली है। और ब्रिस्बेन की एंटरटेनमेंट सीन को लेकर हाल में एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी सामने आई है कि सिटी ऑस्ट्रेलिया की एमर्जिंग कल्चर कैपिटल्स में तेजी से जगह बना रही है। सो दोस्तों, आप सभी के लिए ये फटाफट सी अपडेट्स मैंने आप सभी के बीच लेकर आई। लेकिन दोस्तों, कल फिर नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे अब मंडे को। सो दोस्तों, आप अपने वीकेंड को जरूर एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेनी, क्योंकि मॉर्निंग का शो आप सभी के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो दोस्तों, हमेशा हंसते बसते रहिए। मैं थी आपकी दोस्त होस्ट आरजे चानीजन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी। कीप स्माइलिंग ब्रिस्बेन, कीप शाइनिंग, और याद रखिए हर सुबह एक नया चांस लेकर आती है। सो Have a beautiful Friday. See you on Monday. Same energy, same frequency. Ke saath only on Radio Brisbane.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, caring with dignity.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
5: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
5: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
8: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
7: Acha? Wo kya?
8: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
7: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible nahi hoga.
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी.
9: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 4 दिवसीय इंडिया डे फेस्टिवल की मेजबानी करेगा रशिया। मॉस्को के गोस्तिनी द्वेर में 20 से 23 अगस्त तक इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये भारतीय और रशियन कम्युनिटी को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंध का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। लगभग 20 विशेष जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियों, डांस और आयुर्वेद को जानने का मौका मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कमजोर हो रही ईरान की पकड़। अमेरिका और ईरान के बीच बीते 5 महीनों से ज्यादा समय से जारी संघर्ष, विफल शांति वार्ता और नाक की लड़ाई की भेंट चढ़ता आया है। दूसरी तरफ इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखने को मिला। अब समझ में आने लगा है कि होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। भारतवंशी पिया डांडिया ने अमेरिका में गाढ़ा झंडा, फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक का प्राइमरी चुनाव जीता। भारतीय अमेरिकी पिया डांडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। अब नवंबर में होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के केसी अस्कर से होगा, जो एक अनुभवी मरीन है। आइए जुड़ते हैं भारत में डेमोक्रेटिक का प्राइमरी चुनाव जीता। भारतीय अमेरिकी पिया डांडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। अब नवंबर में होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के केसी अस्कर से होगा, जो एक अनुभवी मरीन है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें।

यादगार हो। नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों में आई नई खटास के कारण इस यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेशी बिजनेस लीडर्स और भारत के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डेलीगेशन के लिए एक रिसेप्शन रखा था। इसमें बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की जरूरत पर जोर दिया और रहमान को भरोसा दिलाया कि उनका शानदार स्वागत किया जाए। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। श्रीलंका के खिलाफ गोल में बचा भारत का डंका। मानव सुधार के 10 विकेट और देवदत्त पडिक्कल के शतक के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है। भारत ने मुकाबले में 165 रनों से जीत हासिल की। जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। भारत की इस जीत में सुथार और पडिक्कल ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कुछ और खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया जिससे भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो सकी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट हो गया है 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारे खूबसूरत साथ रहेगा और आज 21 अगस्त है दोस्तों, 21 अगस्त का सफर जारी करते हैं हम। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ हैप्पी फ्राइडे। तो बताइए दोस्तों, क्या हाल है, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? एनीथिंग इंटरेस्टिंग एंड स्पाइसी, या फिर ऐसे ही सभी भागदौड़ में लगे हैं लाइफ में? जो भी हो दोस्तों, आज एक नई शुरुआत करते हैं शायद। एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट। चलिए एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, सुबह का सफर में आप शामिल है और मैं हूं आपके साथ ही नीलम। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको आज। और चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 12 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा आज, 23 टॉप्स रहेंगे और विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। मेलबर्न के लिए 9 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 16, विंड गस्ट 20 किलोमीटर एन आवर बताया गया है। कैनबरा के लिए 8 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स 15 रहेगा, विंड गस्ट बताया गया है 27 किलोमीटर एन आवर। सिडनी 15 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22, विंड गस्ट बताया गया है 19 किलोमीटर एन आवर। गोल्ड कोस्ट 14 डिग्रीज, पार्टी क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 21, विंड गस्ट 12 किलोमीटर एन आवर बताया गया है। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 15 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20। और ब्रिस्बेन के लिए सैटरडे को क्लाउडी डे रहेगा, संडे को 50% चांस रेन बताया गया है। और शाम को ठंड पड़ रही है, आई थिंक जाने से पहले कोई भी रहता है, वेदर इट बी इंसान या वेदर, सभी कुछ ड्रामेटिक करना चाहते हैं। तो शाम को आप फील कर रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही अचानक से ठंड हो जाता है 5:30 के बाद। तो आई थिंक दैट्स द नेचर ऑफ विद इट बी ह्यूमन। अगर ग्रैंड एग्जिट करना चाहता है तो वो भी कुछ कमाल का करता है, और वेदर भी अगर यू नो चेंज होने को है तो वो भी कुछ ग्रैंड करना चाहता है तो ज़्यादा ठंड। दैट्स माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि कुछ ज़्यादा ठंड हो रहा है शाम को। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभी अभी शायद आप सो रहे हैं, खाट पर है, आज छुट्टी है, गुड ऑन यू, एंजॉय योर डे। काम पर निकल गए हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are.
2: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's
4: from overseas. Start.
5: Welcome back, दोस्तों. There is a bit of a glitch happening there. लेकिन ये तो लाइफ है, होता ही रहेगा. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. दोस्तों हमारे पास ट्रैफिक अपडेट्स अभी कोई एक्चुअली 6 मिनट्स अगो आया था, बट देर वॉज टूंग में मिल्टन रोड यहाँ पर हजार था और अबाउट डायरेक्शंस आर नॉट क्लियर्ड, सो यू सेफ टू गो. जो भी जिधर भी जाना चाह रहे हैं आप, अगर इस रास्ते पर है तो नॉट टू वरी. और दोस्तों रास्ते पर आप है तो बेहद ख्याल रखिएगा अपना. हौले हौले सफर कीजिएगा, आराम से सफर कीजिएगा. जहाँ पहुँचना है अच्छी ठीक ठाक ही पहुँचे. चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत. तो आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान.

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मिज़वानी, आपकी अपनी पहचान, सुबह का सफर में आप शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास एक जापानीज प्रवर्ब है और कुछ ऐसा जाता है कि द बैम्बू दैट बेंड्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ओक दैट रेजिस्ट। इसका मतलब समझाया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफन लाइज इन फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिडिटी। तो अगर आप बहुत रिजिड पर्सन है, अभी डिसिप्लिन अगर आप देखते हो, डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि आप रिजिड हो, या रिजिड का मतलब नहीं है कि आप डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन अच्छे अच्छे वर्जन में भी आ सकते हैं। और अगर आप बहुत रिजिड पर्सन है कि ऐसा नहीं, बेल एकदम ऐसा ही होना चाहिए, तो वो ब्रेक हो जाएगा एक दिन, या फिर आप खुद ही ब्रेक हो जाओगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। कोई चीज़ आप ऐसे करते हो, या और शायद अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई एक डिफरेंट वर्जन आपको बताते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, तो आप अगर उसी चीज़ पर लगे रहेंगे कि तो जस्ट इमेजिन कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आपका एक कोई चीज़ करने का एक तरीका होता है, आप उसी पर अटल है, और आप उससे कुछ डिफर नहीं करना चाहते, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ढेर सारा आइडियाज़ भी होता है, तो अगर वो देते हैं आप, लेकिन तभी भी उस पर रहते हैं, तो बच्चों का जो इनपुट, उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई इनपुट ही नहीं है, तो फिर वो अपने आप को लेसर समझने लगते हैं। देन इतने सारे रिलेशनशिप्स में टेंशन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि आप सभी चीज़ में रिजिडिटी रखते हैं, आप किसी चीज़ को मानते हैं तो उससे हटना नहीं चाहते हैं, तो मे बी थोड़ा सॉफ्टन अप करना ज़रूरी है अपने व्यूज़ को, और अपने मैनर्स को, या जो भी आप सोचते हो अपने थिंकिंग को, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आपका पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो सॉफ्टन हो जाएगा। एंड मॉलेबल आई वुड से किसी भी चीज़ में आप उसका आकार ले सकते हो, उस किसी की तरह फॉर्म हो सकते हो, जैसे कि प्लेडो, ये स्मॉलेबल, उसको आप किसी भी तरह आप बना सकते हो, उस तरह होना चाहिए आई गैस। एनीवे, थोड़ा सा ये बात हम कर रहे थे, इट्स अ जापानीज प्रोवर्ब, वेरी ब्यूटिफुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। फिल्म गुमनाम से हमने इसको लिया।

दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखा है और ये गीत को देखा है तो आप तो जानते होंगे कि फ्रेंटिक, जॉयफुल, प्रिसाइस रेट्रो स्टाइल डांस इसमें किया गया है विद अ क्राउड वेयरिंग आई मास्क. एक्चुअली इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे, ग्लोबल रीच में द ओपनिंग सीक्वेंस गेन्ड अ कल्ट फॉलोइंग इन द वेस्ट आफ्टर बीइंग फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन द ओपनिंग क्रेडिट्स ऑफ द 2001 फिल्म घोस्ट वॉल. तो यह ब्यूटिफुल सॉन्ग संग बाई मोहम्मद रफ़ी जी और अपने शंकर जय किशन का जो संगीत है ये दिया गया है और रिटन बाय शैलेंद्र. तो समथिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvit from the Meat Brothers and aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan
5: aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani
9: se. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। सुबह का सफर में आप शामिल हैं और समय हुआ है आपके घर आए और आपको बर्थडे विश करें, विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर अपना जन्मदिन आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो ढेर सारे विशेस हमारी तरफ से आपको। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। और चलिए दोस्तों, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ भी खास आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो ढेर सारा प्यार, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और ट्रैफिक अपडेट देखते हैं। सेंटेनरी हाईवे डारा एंड समना पार्क, यहां पर कंजेशन है, नो ब्लॉकेज दो नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स ब्रिस्बेन। और चलिए, हमारे पास से एक छोटी सी कहानी है जो हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली क्या बात है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। तो आप बताइए कि आपने क्या सीखा?

0: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम जो यूनिवर्स में रहते हैं, जो प्लैनेट होता है, उसकी जो खूबियाँ होती है, तो कभी कभी लाइफ में जब हम कुछ ऐसा करते हैं, जो ओब्वियसली इतना सारा एक्सप्लोटेशन हम करते हैं अपने प्लैनेट को, और आई डोंट नो यू नो कि हम इसको किस तरह से रिकवर करेंगे, एंड इट्स अ ऑन गोइंग डिस्ट्रक्शन थिंग आई गेस। लेकिन इसके बावजूद क्या आप जानते हैं कि हमारे प्लैनेट में, द प्लैनेट वी लिव ऑन, यहाँ पर पेंगुइन्स टेक टर्न्स ऑन स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग विंड सो अदर्स कैन स्टे वार्म। तो मुझे ये मिला तो आई वॉज थिंकिंग कि रियली मैन, एक्चुअली ये सच में है कि जो एम्परर पेंगुइन्स है, जो एंटार्क्टिक जो गेल्स होते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली यू फाइंड देम, तो पेंगुइन्स क्या करते हैं, दे मेक अ सर्कल तो एंड दे टेक टर्न्स, और तो बीच में कुछ पेंगुइन्स रहते हैं एंड दे शफल शफल शफल शफल, और टर्न्स होता है, जो बाहर वाले रहते हैं वो अंदर जाते हैं और जो अंदर वाले होते हैं वो बाहर आते हैं। सॉर्ट ऑफ ये उनका काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ शफलिंग है जो वो मूव होते हैं। और आप जानते हैं कि जो एंटार्कटिक गेल्स को सर्वाइव करने के लिए ये तरीका वो अपनाते हैं, और जो वॉर्म्थ, जो हीट जनरेट होता है इन द सेंटर ऑफ 37 डिग्रीज हो जाता है, जानते हैं आप। सो अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट ऑल द बैड थिंग्स दैट हैपन, यू लुक एट ओ अ थिंग जो आप सोचोगे काफ़ी मामूली है, लेकिन आई थिंक अगर रियली में देखे तो ये मामूली बात नहीं है कि जिस तरह से ये पेंगुइन्स बिहेव करते हैं एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और फ्रीजिंग यू नो जगह पर ऑब्वियसली एंटार्कटिक में, एंड जो गेल्स हो गए जस्ट इमेजिन, एंड उस तरह पर वो एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। सो इससे भी कुछ सीखना है, और यू नो अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, हम एक दूसरे को एक दूसरे का लुक आफ्टर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड जो कि रक्षाबंधन है नेक्स्ट वीक, हमारे पास एक रक्षाबंधन सॉन्ग है, एंड इस गीत के साथ याद करना चाहेंगे ऑल दी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर, एंड फॉर द लव दैट यू शेयर।
1: सॉरी बहना, बहुत ट्राई किया पर इस बार नहीं आ पाऊंगा।

0: तो बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे, और चलिए आगे बढ़ते हैं सफर के सफर में। वैसे अगर आप वो पर्सन हो जो कभी मज़े लेकर खाना खाते हैं, टाइम लेकर और रश नहीं बिल्कुल करते, या फिर आप वो पर्सन हो जो हड़बड़ी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी ऑन द रन आप खाना खाते हैं, तो आयुर्वेदा कहता है, मुझे एक छोटी सी आर्टिकल मिली जो चले पढ़ते हैं, आई थिंक इट्स गोना बी बेटर दैट वे। तो आयुर्वेदा कहता है कि ईटिंग इन अ रश टर्न्स एवरी हेल्थी फूड टू पॉइजन। आयुर्वेदा टीचेस समथिंग वी ऑफन फॉरगेट, इट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट दैट मैटर्स बट हाउ द फाइनेस्ट फ्रेशेस्ट मील कैन स्टिल सिट बैडली इफ ईटन इन द रोंग स्टेट ऑफ माइंड। एट द सेंटर इज अग्नि द डाइजेस्टिव फायर, इट बर्न्स बेस्ट व्हेन द बॉडी इज काम एंड एट रेस्ट। Only then does it settle in a truly break down and absorb what you have eaten. But eating in a rush, stressed, distracted or upset, throws the body into fight or flight, that the fire falters. An ancient text warns that food eaten in anger or anxiety will not digest well, whatever its goodness. When food is not fully transformed, it leaves behind ama, the heavy residue. Ayurveda links to fatigue, dullness and imbalance. Good food, poorly digested, was believed to become its own kind of burden. So before you eat, pause, take a breath, sit down, slow down and let the body soften. Ayurveda believed that a calm meal was worth more than a perfect one eaten in a hurry. तो दोस्तों, अगर कभी कभी आपने शायद ये मेरे साथ हुआ है, मैंने जल्दी में खाया एंड यू फील द फूड इज़ जस्ट सिटिंग इन योर टमी एंड इट्स अ वेरी बैड फीलिंग एक्चुअली, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट्स जस्ट सिटिंग द एंड बहुत अजीब सी फीलिंग है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अगर डिस्ट्रैक्टेड हो आप, स्ट्रेस्ड हो और रश में खा रहे हैं आप, तो अगर अच्छा बना हुआ हेल्दी खाना भी पॉइजन हो जाता है आपके बॉडी के लिए, बिकॉज जो अग्नि होता है इट नीड्स दैट लिटिल यू नो कामनेस सो इट कैन वर्क इट्स मैजिक। अगर आप नहीं करते हैं तो वो लाइट जो होता है वो फल्टा होता है, जो अग्नि होता है वो फोल्टा होता है, एंड देन नॉट इनफ इज देयर टू डाइजेस्ट यू मील। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जरूर सोचिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: अरे चुप की रानी,
2: अरे जा जा खेला राजा।

0: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे और 5 मिनट हो गए हैं, 8:01 का सफर बाकी है हमारे पास और ब्रिस्बेन में 13 डिग्रीज है अभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
1: टिंडर एंड आइल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल, बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
2: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
3: आई वाज टोटली वर्थ इट, गॉड।
2: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाओ!
0: लिपट गई आके नशे में,

सो बहुत ही खुशरसा गीत आप सुन रहे थे, और मेट्रो इन दिनों से इस गीत को हमें लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन दें कि कौन से प्लांट्स आप घर के अंदर धर सकते हैं जो हील करता है, जो आप जब आप सो रहे होते हैं। तो उसमें से पहला वाला आता है इंग्लिश आईवी। ये हैंगिंग प्लांट है और क्रीपर्स, सॉर्ट ऑफ क्रीप होती है। ये कट करता है एयरबोर्न मोल्ड बाय अप टू 94% ओवरनाइट। और यही इसकी खूबी है कि ये रात में ज़्यादा वर्क होता है, इसके जो लीव्स हैं, जो पत्ते होते हैं। और जैस्मीन को माना गया है कि ये साइंटिस्ट कंपेयर इट टू अ माइल्ड सेडेटिव, और सोने में आपको मदद करती है। लेकिन यू नो दिस लिटिल जैस्मीन, मुझे पता नहीं था कि आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। एक्चुअली यू कैन पुट इट एज अ इंडोर प्लांट। और लवेंडा, लवेंडा स्लोज योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इट्स जस्ट उसके महक इतना सूदिंग है, कामिंग है। कुछ लोगों के लिए शायद नहीं है, लेकिन मोस्टली लवेंडा को माना गया है कि वो सूद करता है, उसके जो ऑयल्स होते हैं। और आप अपने पिलो में भी, पिलो कवर्स में भी एक ड्रॉप डाल सकते हैं इसका जो ऑयल है, एंड देन यू हैव ब्यूटिफुल स्लीप। अगर आप प्लांट घर के अंदर नहीं रखना चाहते, ये नो हार्म। एंड स्नेक प्लांट को माना गया है कि ये रिलीज करता है, रिलीजेस ऑक्सीजन एट नाइट। तो स्नेक नाम भले है, लेकिन इसकी खूबियाँ बड़ी अच्छी हैं। और जो एलोवेरा है, इट्स अनदर नाइट टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो घर के अंदर अगर आप एलोवेरा रखते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। स्पाइडर प्लांट क्वाइटली रिमूव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है। तो दोस्तों, ये कुछ हाउस इंडोर प्लांट्स के बारे में हम बता रहे थे जो आप घर के अंदर रख सकते हैं, एंड दे वर्क द मैजिक। चलिए एंजॉय करते हैं।

couldn't let go of the last part. Anyway, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, जो हमारे दोस्त, जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है, क्या होता है कि जब कोई चीज प्लान करते हैं, लास्ट मिनट में एक वो दोस्त होता है या फिर यू नो अ कपल ऑफ देम, जो लास्ट मिनट में प्लान कैंसिल कर देते हैं या फिर कहते हैं कि ओ आई वोंट बी एबल टू मेक इट. चलो कोई बात नहीं, अगर नंबर्स एकदम से लो नहीं होते देन यू कंटिन्यू, यू गो अहेड विद योर पार्टी और व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आपने प्लान किया होता है, लेकिन वो एक चेयर एम्प्टी रहता है आपके दोस्त का. तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इनवाइट्स अगर वही एक पर्सन हमेशा नहीं आता है, तो आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फिर उनको बुलाना ही छोड़ देते हैं, यू नो कि लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर फ्रेंड्स हैं तो आप उस दोस्त को, जस्ट बिकॉज वो आता नहीं है, आप उसको क्यों छोड़ देते हैं इनवाइट देना. यू नो दिस थिंग्स डू हैपन एंड इट्स वेरी हर्टिंग. एंड द थिंग इज, ये एक स्टोरी मैंने पढ़ा था एंड इट रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, यू नो. एंड आप उस दोस्त को फिर बुलाते नहीं हैं, लेकिन अचानक से अगर शायद आपने उसको इनवाइट भेजा और वो आ गई, तो अच्छा हो गया क्योंकि दिस पर्सन कम्स एंड यू वुड सी दिस पर्सन हाउ शी इज, उसको इतने दिन से उसको इन पर्सन में मिले नहीं थे. तो दोस्तों, ये मेरा ये छोटी सी चीज़ बताने का मतलब ये है कि किसी को आप जज ना करें कि अगर कोई इनवाइट देने पर भी नहीं आता है, नहीं डजंट शो अप. बट द फर्स्ट इक्वेशन ऐसा होता है कि अब लाइफ में ऐसा होता है कि आफ्टर सम टाइम सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने दूर चले जाए कि फिर ब्लूटूथिंग, इसका मतलब जब ब्लूटूथ आउट ऑफ रीच हो गया ना तो ब्लूटूथ कट जाता है. तो ऐसा का थोड़े होना चाहिए कि आप ब्लूटूथ का नहीं है कि आप उस तरह से परफॉर्म करेंगे कि अब आउट ऑफ, थोड़ा डिस्टेंस हो गया तो आउट ऑफ रीच हो गया, आपको आप टच में नहीं रह सकते. तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लूटूथ बन जाए, तो उस तरह से आपको बिहेव नहीं करना है. तो जिस जो दोस्त शायद काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा है, आप नहीं जानते कि वो किस, शायद कोई प्रॉब्लम में हो या कोई सिचुएशन हो जो सिचुएशन से शायद झेल रहा है या झेल रही है, शायद दैट्स मेकिंग हर नॉट एबल टू कम, लेकिन अचानक से आपने इनवाइट भेजा और वो पर्सन आ गया एंड अच्छा सरप्राइज भी हो गया और मिलना जुलना भी हो गया. लेकिन ये याद रखे दोस्तों, अगर ऐसा होता है, डू नॉट फॉरगेट टू इनवाइट दैट दोस्त या सहेली, आप उसको फॉरगेट ना करें, हमेशा संपर्क बनाए रखें. और यू नो, यू नेवर नो कौन किस टाइम पर किस चीज से गो थ्रू हो रहा है. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जस्ट रिमेम्बरिंग दैट पर्सन, बिकॉज उस पर्सन ने जब आए और वो आपसे कहता है कि थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, थैंक यू फॉर बींग देयर, यू नो, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग. अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर वो पर्सन आकर कहता है कि नो, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, द थिंग इज यू रिमेम्बर्ड मी एंड दैट्स व्हाट ऑल दैट मैटर्स. सो अगर आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ऐसा ज़रूर इसको अपने जो कर रहे हैं उसको आप सुधारें. और बहुत इम्पोर्टेंट है टू कीप इन टच एंड किसी को जज ना करें. और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. बहुत ही खूबसूरत सा गीत लाए हैं अग्निपथ से.

किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम।

मन का नशा कभी गरम कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। हो बेटा जी अरे हो बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आधे घंटे का सफर बाकी है। याद दिला दे आपको कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। शायद आप रिमेम्बर करते होंगे कॉलोनियल कजन्स, उन्होंने ये एल्बम निकाला था एंड वन ऑफ द सॉन्ग्स वेदर एंड ये मुझे याद आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो थिंग्स दैट वी लीव बिहाइंड उस टाइम पर जब हम छोटे थे या फिर अपने टीन एजेस में, कोई गीत आपने सुना था शायद, अचानक से आपके सामने आता है एंड यू थिंक ओह या आई रिमेम्बर दैट वन, एंड बाय चांस शायद आपको वो वर्ड्स भी याद हो गए, उसका जो लिरिक्स है वो वर्ड्स आपको याद रहता है, आप सोचते हैं कि भूल गए हैं लेकिन नहीं। एंड आई डोंट नो कि मे बी दे लीव दैट लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन यू, एंड कोई कुछ रहता है उस टाइम पर आप रिमेम्बर करते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, क्योंकि जो गीत बचपन में सुने थे उनके वर्ड्स बाय हार्ट आपको याद रहता है, ऐसा क्यों? आई नो, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, क्यूरियसिटी किल द कैट, लेकिन यहाँ पर किलिंग वाला कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग आई वुड लाइक टू नो कि क्यों उस टाइम पर कि जो बातें, जो गीत आप सुनते हैं उनको याद करने में बहुत तकलीफ नहीं होती है, ये नो टेंशन, लेकिन ओ मे बी इट्स लाइक दिस कि उस टाइम इतने सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो नहीं थे। अभी आप एक गीत अगर सुनना स्टार्ट करते हो देन आपको कोई और गीत दिख गया, उसको बीच में लीव करके आप दूसरे गीत पर चले जाते हो एंड समटाइम एंड ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ होता है ये चीज़। अगर मैं कोई गीत सुन रही हूँ, अगर पहले दफ़ा में मुझे वो इम्पैक्ट नहीं लगा है, वो गीत का जो वर्ड्स या बीट मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई विल लीव इट फॉर लेटर, जब मुझे आराम से सुनना होगा शायद, यू नो देन मे बी आई विल मेक माई सेल्फ लाइक द सॉन्ग। और अगर कोई ऐसा होता है कि अगर मुझे एक झटके में अच्छा लग गया कोई गीत तो दैट्स मी, लेकिन मे बी दैट्स वाई। और अभी इतने सारे एक्सपोजर है, सो फॉर सो मेनी थिंग्स, इतने जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इतने गीत आप सुनते हैं कि यहाँ से देख लिया, वहाँ इतने ऑप्शंस है, ये वो। पहले था कि आप रेडियो पे सुनते थे या फिर अपने डीवीडी लगाते थे या फिर सीडी लगाते थे या कैसेट में सुनते थे एंड यू वुड स्टिक टू दैट, यू वुड यू नो एंड मे बी दैट्स वाई, दैट्स द रीजन, क्योंकि आपको बस उतना ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर था। अभी ढेर सारा अनलिमिटेड हो गया, तो ढेर सारे चीज हो गए हैं, आपका जो दिमाग है एक जगह पर रहता नहीं, तो आप किसी गीत को उतने करीब से सुनते नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जो वर्ड्स है आपको याद नहीं रहता। आई वुड से दैट, आई बेग टू डिफर। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।

इस तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म रेडी से, इस गीत को हमने लिया। और ट्रैफिक अपडेट देते हैं, पैसिफिक मोटरवे मैग्रेगा, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हैजार्ड है, वन लेन इज ब्लॉक नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स द सिटी। और चलिए दोस्तों, हमारे पास एक फ्लैक्स सीड का हेयर जेल का रेसिपी है जो आप लगा सकते हो आपके हेयर मास्क एज अ हेयर मास्क। तो क्या है जो लेते हैं यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स, और टू टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लेते हैं, टू कप्स वाटर लेते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं, तो बॉइल फ्लैक्स सीड्स इन वाटर 14 to 12 minutes और स्टे अंटिल इट टर्न्स जेल लाइक। तो आप जब उबालोगे फ्लैक्स सीड्स को, तो वो अपना जो कोटिंग है वो शेड करता है एंड इट बिकम्स रियली जेल लाइक इन टेक्स्चर। और उसको आप स्ट्रेन करें और उसको कूल करें, एंड देन आप इसको ग्लास जार में स्टोर कर सकते हैं और अपने बालों में, अपने स्कैल्प में लगाएं और हेयर में, एंड एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आप इसको रहने दें, एंड देन यू कैन जस्ट वॉश इट विद योर माइल्ड शैम्पू। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है फ्लैक्स सीड्स, और शाइन देता है, स्मूथनेस देता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल, और हेयर को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कि कौन सा हेयर मास्क अप्लाई, तो ये आप घर पर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो रिजवानी, आपकी अपनी पहचान। सुबह का सफर में शामिल है, बस थोड़ी ही देर बचा है हमारे और आपके साथ का।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Dosto, ab to jaane ka waqt ho gaya hai aur aapne hamara saath diya, iske liye thank you very much. Bahut maza aaya aur aasha hai ki aaj ka din bahut acha guzre. Have a lovely day, beautiful weekend. Milte hain agle hafte. Till then, namaskar.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: इहदिना الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: गर्म करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
1: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपके खिदमत में महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
2: अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुल्लाह इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत व बिरादरान मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अजीदान मिल्लत बिरादरान महतरम, ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी माह मुबारक के अंदर सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपकी विलादत बासआदत के मुतालिक चंद बातें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। माह रबी अव्वल की 9 या 12 तारीख को रहमतुल्लिल आलमीन सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। पीर का मुबारक दिन और सुबह सादिक का सुहाना और नूरानी वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। अरब का मशहूर शहर मक्का मौजमा, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस घर बैतुल्लाह शरीफ है जो हमारा क़िबला व काबा शरीफ है, इसी पाक शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अरब के तमाम कबीलों में कबीले कुरैश सबसे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम कबीला था। तमाम कबीलों की सरदारी और बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत और निगेबानी व निगरानी कबीले कुरैश ही के मुअज़्ज़ज़ लोगों के हाथों में रहती थी। सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब कबीले कुरैश के मोहतरम व मुअज़्ज़म शख्स थे और पूरे मुल्क की सरदारी इन्हीं के मुबारक हाथों में थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी इज्जत व अज़मत अता फरमाई थी। इस्लामी तारीख का मशहूर वाकया है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से 40-50 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की बहुत बड़ी फौज लेकर इस नापाक इरादे को लेकर मक्का मौजमा आया कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस घर बैतुल्लाह शरीफ को अपनी ताकत और कुव्वत से गिरा दे, उखाड़ दे। हाथियों वाली ये जबरदस्त फौज जब मक्का मौजमा के करीब पहुंचकर एक जगह ठहरी, फौज ने पड़ाव डाल दिया कि आज यहां ठहर जाए, कल अपना काम करेंगे। मक्का मौजमा की एक वादी में हजरत अब्दुल मतलब के ऊंट चल रहे थे। ऊंट बड़ी तादाद में थे। अबरहा की फौज ने सरदारी मक्का अब्दुल मतलब के ऊंटों को पकड़ लिया, अपने कब्जे में कर लिया। जब हजरत अब्दुल मतलब को मालूम हुआ कि मेरे ऊंटों को अबरहा की फौज ने पकड़ लिया है, तो हजरत अब्दुल मतलब बड़ी शान और शौकत के साथ बादशाह अबरहा के पास पहुंचे। अबरहा को जब भी मालूम हुआ यही सरदार मक्का है, मक्का के बादशाह यही है, तो बड़ी इज्जत के साथ अपने पास बिठाया और हजरत अब्दुल मतलब से आने की वजह पूछी, तो सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ सरदार यमन, आपकी फौज ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है, मैं अपने ऊंटों को लेने आया हूं, मेरे ऊंटों की को वापस कर दे। अबरहा ताज्जुब में पड़ गया और कहने लगा, मैंने सुना था कि सरदार मक्का बहुत अकलमंद होशियार है, मेरा ये ख्याल था कि आप ये गुजारिश करने आए होंगे और ये इल्तिजा करोगे कि आप और आपकी फौज बैतुल्लाह शरीफ के गिराने के नहीं, गिराते नहीं, उखाड़ते नहीं, आप तो अपने ऊंटों की बातें करते हो, बैतुल्लाह शरीफ के मुताबिक तो कुछ भी कहने नहीं आए, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े ईमान और यकीन से जवाब दिया, अय अबरहा, अय सरदार यमन, ऊंटों का मालिक मैं हूं, ऊंट मेरे हैं, और बैतुल्ला

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात।
1: और रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमा प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 79 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ओल्ड विंटेज कवालियाँ। अगर एक बार तक के लिए आपको साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रीन सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ग्रीन सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ग्रीन सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVD, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।